लागी रानी पांडव बीच का भाई बीच मा सदा थीन द्रौपदी छोरा पांच पराक्रमी होना गए ती द्रौपदी का पछी रानी अर्जुन की पछी होना गईन बहनी जमुना की नारायण।

がりかな。いへらまへらまへらまい。माचा पांडव भाई और के भाई भाने देखी उता पकी परमात्मा 36 वर्ष पछाड़ी राज्य उनीले 36 वर्ष पछाड़ी यादव हरू जो विपरा का श्रापाले सारा छिए भए प्रभास तीरामा देखे जसै कृष्णले दिखमाने मनमा कुल छिए भयो जानु पर्यो लौ भनी सुरहारण वैभवशन पनि भयो दाजै बलराम पनि नारायण।

सुनु वसुदेव देव विपानी देहांत हुदा भये यो सूरी करद्य वशिष्ठा गुयो वाता वंदा भये नारायण।

0: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुंग समाचार को सहयात्री।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीती कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीती कथा।

0: you, Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार, रेडियो सैलन सामुदायिक एफएम बैंड में थप्लो 7 मेगाहर्ट्ज मद्र प्रसाद सापकोट। आज विक्रम संवत 2083 साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुलाई 27 तारीख श्रावण 11 गते सोमवार त्रयोदशी तिथि। अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षण कल्पय भरी।

राजा नौश काय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन समा

0: tiyo pap ko kya dara mancha tora balale jasle buhari liyo sarai dukhi bhayera suguri bajile binti gareko suni सूर्यको अभाव दुःख हार्दछु भने अन्तै कारणले गुनी।
1: मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तार्थलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दस जोदायको फलचारी बुद्धि हिँड दोन जानी के सुनि र पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार हो। जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपिश तिम्लो उजागर, रामदूत अजुल दबलधामा, अञ्जनी पुत्र पवन सुत राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार्य स्मृति संगी, कञ्चन वर्ण विरास वेशा, कानन कुण्डल कुञ्चित केशा, हाथ बर्जा ध्वज विराजयी, कांधे मुझे जन साजयी, शंकर सुमन केशर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूपधरी से दिखवाया, विकट रूप बदल लंगाधर आया, हेम रूप धरे असुर संहारी, रामचंद्र के काश संहारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हरसिउर लाए, रघुपती कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सुम भाई, सहज बदन तुम्हारे जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, हेम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्री भई किना, राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विसन माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लिल्योताई मद फल जानु, प्रभु मुन्द्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर्जन आई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, वतन आज्ञा बिन पैसारे, सब शुकलाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हागते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तब श्री राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगद जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नमन निधि के दाता, असवर दिन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रघुपति दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता चिदन धरई, हनुमत से ही सर्वसु करई, संकट कटई मिर सब पीरा, जोश मिरई हनुमत बलबीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी माँ सुख हुई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, किजनाथ हृदय मोहडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवंश रूप शिवर रामचंद्र शंकर जी बजा। जय हनुमान, जय बजरंगबली।